0: कलुए कांता तो डानन पलुओ चोकरी देवो वे नापी के मावेन मनावी वेंटल मलेक्टा कनरिन कलंगिन हाथनानन पलुओ गुस्ती आयु दादस मायु सतान बचिक
1: कलारिस कलारिस